फलों से भी आपे राखा है। आपे नाम जपावै जहने काज किरत सेवक की तहां तहां उठता है। सेवक को निकटी हुई दिखावै जो जो कहे ठाकर पै सेवक तत्काल हो आवे। तिस सेवक के हौम बलिहारी जो अपने प्रभु पावै तिस की सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आवे। सतगुरु गुरु अर्जन देव सचे पातशाह सेवक का जिक्र करते हैं जो सच्चे दिलों अपने गुरु का सेवक बन जाता है। उस सेवक को सतगुरु जी कितना मान बख्श रहे हैं, उस सेवक को कितने मरातबे दे रहे हैं, या यूं कहो कि उस सेवक ते सतगुरु जी कितनिया मेहरां ते बख्शां।

एक है हरी हरी, ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनु एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिस दा विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिस दा हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिस दा हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ए कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी, ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

साहिब फरमान करदे हन कि इह सारा कुछ परमेश्वर दी कृपा नाल गुरु तों ही प्राप्त हुंदा है।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवा, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

0: Seguiremos a donde están nada más.
1: ये ओह जो दे ये पूरे दे से जाओ गाना ना तो गुरु ग्रंथ साहिब की ये वाणी आप उच्चारण कर लेना आखो सतनाम वो पूरा सबो की तलवंडी फिर एक तंबू विच गुरु गोविंद सिंह जी दूजे तंबू विच भाई मनी सिंह।

साखी है। जिन्हों कवि ने कविता दे रूप विच पेश कीता है और इस साखी का सारा पिछोकड़ इको ही है।

राज भाग भी छोटा, हीरे मोती भी छोटे ने, इस जपजी दी बाणी चित जोड़ के सुना रहे हैं ते एदे बदले गुरु नानक दी गद्दी दे देनी। सूरज प्रकाश दियां पंक्तियां ने के सतगुरु ओ गद्दी देण लई चरण उठाए ने कि अज ए गद्दी ते भाई गोपाले नू बा देना। प्यार नाल आखो सतनाम। पर कहंदे माया वरत गई। भाई गोपाला जी कहण लगे मन विच के पाठ सुनन तो पहले ते कहंदे सी जो मन बांजे तो फल मैं देंगा, ते हुण इंज लगदा जिवें सतगुरु जी तुर चले ने, उठ के तुरन लगे ने, ते मन

एक सपना है हजूर बाणी विच भी बख्शिश कर दिया न सपने छेती चित मूर्ख लाया। ओए मूर्खा कदी सपने भी सच्चे होए हन। सोच ए संसार भी सपना है जितने तियां पुत्र धन दौलत महल मारियां जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए ये सपना है सपने नाल चित लाउन वाला मनुख कदे तोड़ नहीं अपड़े। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि श्वासा नू सिमरन दी माला बना श्वास श्वास हर नाम जप बिरथा श्वास मत खो क्या जाने ए अंतकाल ए श्वास मत हो। किसे नू की पता है कि जेड़ा श्वास मैं जप रहा सतनाम श्री वाहे गुरु इस तो अगला श्वास आना है कि नहीं आना इसका किनू पता है। इसलिए हजूर बख्शिश कर देखन भाई सास ग्रास बंदगी कर श्वासा का कोई पता नहीं। एक बुजुर्ग बाबा शरीर छड़न लगा सारा परिवार आके बेनती करन लगा बाबा जांदियां जांदियां कोई चंगी सुमति दे जा। ए बुजुर्ग बाबा कहन लगा मैं अपनी होंद विच अपने जीवन विच तुहानू लखां ही कमा के दिते हन हुण मेरे श्वास समाप्त हो गए हन ते कुछ खर्च करके कुछ पैसे दे के ते श्वास लियाओ तो मैं तुहानू सुमति दे सकदा हां पर इस सारे परिवार ने नीवियां पा लईयां। आख्या बाबा ये श्वास तो किसी भी कीमत तो मुल नहीं मिलते। फिर ये बुजुर्ग कहन लगा फिर यही उपदेश है कि इना अमोलक श्वासा दे नाल नाम दे लाला दे वणज करना तुहाडा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी तनता दे योग हो जाएगा। ऐसा ना होवे के लाल गुआच जान ते फिर तू लभदा फिरे ए लभण वाले नहीं हन।

अपने जबान में समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नूं जबान बना दे रसना बना दे ताकि तेरा जस गाइए।

भी है पुन भी है, पर तू ये दस अंत वेले मेरी सहायता करेंगे। ते मां ने कहा बेटा मैं तेनु पालिया।

कि अंत वेले तू मेरी सहायता करी। साध संगत घरवाली ने भी यही गल कही, मेरे माता पिता ने तुहाडे लड़ लाया, तुहाडा फर्ज है मेरी पालना करनी, इथे दुख सुख विच मैं तुहाडे नाल हां, पर जद उस दरगाह विच लिखा

मरा मरा जपदिया जपदिया ऐसी मालक दी मेर होई बिरती लग गई मन जुड़ गया ए रसना जेड़ी मरा मरा कहती सी कृपा होई मालक दी मरा मरा तू हुण राम राम हो गए समा बीते ओही आरिया समाज दे सत रिखी फिर उस पासे आए राम राम दी आवाज आ रही है इधर उधर देखिया बंदा कोई नजर नहीं आंदा एक मिट्टी दा ढेर है उत्ते कास उगे अपनी शक्ति नाल

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार

कि ये सब कुछ कर दिया होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्ला विचू हाय नहीं निकली, कदी अखां तो अथरू नहीं वगाए। कोई साधारण आदमी नहीं सन, उस साधारण आदमी पावे किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे, निस्संदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरुखों विच ही हुंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत किते होण, अते फिर जिहड़ा महापुरुष शिखर ते पहुंच जांदा है ओही ही भविख नूं देख सकदा है, जिस नूं साधारण नजरां वाले नहीं वेख सकदे। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हिंदुस्तान दे विच जगह जगह हुंदे होए नादेड़ गोदावरी नदी के किनारे वाल जा

थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत रजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर रजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिआ, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिआ हिरनी जिहड़ी सी मरी, उहदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बनिया, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बनिया, योग सिखिया ले, फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया, दखण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया, गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पिया, अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधोदास दे आश्रम पहुंचे ते माधोदास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधोदास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधोदास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बहना सी बह गए हां, क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जान गए। उधर चेले जंगल विच भजे गए, माधोदास बैरागी नूं जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। उहदे चेहरे अगे किसे दीआं अखां नहीं हुंदीआं। तां माधोदास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्नू पलंग तू थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां पलंग नू उल्टाण दी कोशिश कीती, पर माधोदास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सकिया। जद माधोदास बैरागी ने पूरा जोर लाया
पलंग उलटाण वास्ते पलंग ना उलटा सकया ता समझ गया कि मेरे पलंग ते जेड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधोदास बैरागी अपने आसन तो उठया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

एक होर हिरनी भी है जिसनु कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देनी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि जिसनु जुल्मी अपने पैरों थले लताड़ दे पे ने जुल्म पे कर दे ने माधोदास बैरागी ने ए सुनिया होया सी और सुनिया भी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्ना सारे

माता सती ने उन्हां नूं कहा, शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जान की इजाजत दी। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलों में पहुंचे, जिथे

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उस वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी

आग्या मंगी ता भगवान ने किया जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर किया ता उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वड के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलो आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महापैरों नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया।

ठंडे बाटे दी पहल नू छक लिया। उस सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस ते जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

उस वह करके और सात समुद्र में की मत कहो। काट वनस्पति सगरी लिख बहु के लेखन काज बने हो। सार सुता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण न विनती काल कृपाण न विनती न तो तुमको सब नए कर हो। बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कोट बराज हमारे समझाओ अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी।

चाहे सकाम सेवा कर चाहे निष्काम सेवा किसे काम ना पूरी हो जाती और जिन्होंने निष्काम सेवा की है उन्होंने की मिलता है यारी साध संगत सकाम सेवा भी कदे जाया नहीं जाती जो गुरमुख तन मन तन नाल गुरु कर दी से गुसाई तुलसीदास जी ने लिखे है ना तुलसी देर न कीजिए भजिए नाम सुजाए लोक मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान किसी बंदे का कम करिए भी मजूरी दे रब किवें रख ले भगवान किवें रखेगा पांडित लिखे जाके सिमरन सब कुछ पाइए तो बिरती किसी भी जेड़ा गुरमुख एक कदम भी गुरु वाल रखता है ओदा फल भी जरूर मिलता बाबा जी तो बदल कर दे सन जे गुरु ने प्यार का फुरना ही बना लीए ना तो ओदे बदल भी बख्शिश बख्शिश चंगा रामा उन्हें तेरी मर्जी केड़ी सेवा करना चाहे सोचन लग गया अठानी रोज वाली सेवा कर पर जिन्हें लखा गिने उन्होंने वास्ते अठानी की चीज ख्याल आया चलो मना निष्काम सेवा कर सीधा लंगर च आ गया गंगा राम लाहौर दे रहन वाला है सेठ अज धन गुरु अमरदास पातशाह दे लंगर जूठे पांडे पे हमारी सेवा कर दे एक महीना बीत गया दो महीने तीन महीने पर कदे भी सतगुरु सचे पातशाह जी ने आके नहीं पूछा तू कौन है की सेवा करदा किस वास्ते कर पर गंगा राम मन नु समझांदा है मैं गुरु अंतर जामी तू लगा रह जे गुरु कर दी सेवा मिली है ता तू करी गंगा राम नाले जूठे भांडे मांजदा रहंदा है ते नाले पढ़दा रहंदा की